म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलवती र पुत्र गुणी ले मालिक हाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजु भाई सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।

0: janju vanchine jade ka lanu daino lanu daino e krishna lanu daino janju vanchine jade ka lanu daino bhandai gae krishna ji jade ka lai leno bhandai gae krishna ji jade ka lai leno राधिका के आमा वंचिन आज पठाउदिन राधिका के आमा वंचिन आज पठाउदिन
1: यसलाई लीला दिनभरि पनि गाउन सक्नुहुन्छ

0: Liponia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

प्रत्येक सातक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीती कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीती कथा।

हाईटेक नर्सरीमा उत्पादित गुणस्तरीय फलफूल जड़ीबुटी र विभिन्न बिरूवाहरूको भरपर्दो गन्तव्य कल्पवृक्ष बहुउद्देश्य नर्सरी फार्म। यहाँ लोरसल्ला, टिमुर, कागती, सुन्तला, जापानीज हलुआ बेद, जापानीज नस्पति, रेड किवी, ग्रीन किवी

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैंडविड्थ थप्लो साथ मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद साहकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 21 तारिक आषाढ 7 गते आइतबार सप्तमी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षण कल्पैभरि।